बिन सत संग सुख किन ना पाया, जय पूछो बेद विचार राणा राव सब कऊ चाल, झूठ झूठ छोड़।

जगदीशुरा मन हिच्छे फल पावहौ सब फल पावहौ धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा सारख महला चौथा जप मन माधो मद सूदनो हर श्री रंगो परमेसरो सत परमेसरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ हर घट घटे घट बसता हर जल थले हर बसता।

कन्या जैसे संग सहेरी प्रिय बचन उपहास कहो जाओ सुरजन गृह भीतर आयो तब मुख काज लजो जो कनको उठारी चढ़ो कबरो होत फिरो।

देओ सब मन तन अर्पाओ शीस चरण पर राख्यो चरण बंदना अमोल दासरो देओ साध संगत अरदाग्यो करहो कृपा मोह प्रभु मिलावहो निमख दर्श पे खाग्यो दृष्ट भई तब भीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजे हो सारग महला पंजवा माई सत सत

नेस बासुर नेख्यातर बेनासी रावस असियर बेनादा गेर बसदा जल पवन जायगो एक साध बचन अटलादा आंड बेनासी जेर बेनासी ओत भुज सेत बेनादा चार बिनासी खटह बिनासी एक साध बचन नेह चलादा राज बिनासी ताम बिनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बिनासी एक साध बचन आगादा।

मन बासबो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाओ जहां बिसर ठाकुर प्यारो तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिय तह महापायान उद्यानद जहां कीर्तन साध संगत रस तह सगन बास फलांद फलानद जहां कीर्तन साध संगत रस तह सगन बास फलानद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानद एक निमख गोबिंद भजन कर तौ सदा सदा जीवानद सरन सरन सर

छोड न कतहु जाए, कवन उपमा कौन बढ़ाए, क्या गुण कहो रीजाए, होत कृपाल दीन दया प्रभ, जन नानक दास दसाए।

सगल त्यागौ जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई प्रभ रंग दयाल मोहे गृह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब

सुख पाया। जिन स्यो गोष्ठ से तरे बूढ़त घोर अंधकूप मह, ते साधु संग पार परे। जिन के भाग बड़े है भाई, तिन साधु

श्रवण हो पूरे देहा प्रिय अंक समानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी जेहे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनकै बस आयो भगत बछल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हार संग मन मानिया।

ब्रह्मांड उदार है रहाओ। करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख सा मार है। हो कृपाल दीन दुख पंजन हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निसतार है। क्या ए भूपत बपुरे कहिए।

0: प्रतिपालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं ओला जे तखत बैसाल है तो दास तुम्हारे कास बडाव है के तक बोला
1: जन
0: जे तखत बैसाल है तो दास तुम्हारे कास बडाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बिदाते मेरे ठाकुर अग है अतोला
1: बिदाते तदी नाल
0: जन नानक के प्रभ पुरख बिदाते मेरे ठाकुर अग है अतोला सारग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख ओ पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुने मन होए रहस आत हृदय मान दुख जोहं
1: ए रहस आत ठीक है रहस पाठ चार वासे
0: जिस सुने मन होए रहस आत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बण आई प्रभ तोहं किल विख गए मान निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण सर करण कारण समर्थोहं
1: समर्थोहं
0: कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समर्थोहं करण कारण समर्थोहं।

अगम काट वासा रहाओ अपूल अपूल ना पुले अपूल ना पुले लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन मह साज सवार बिना है भगत वछल गुणतासा अंध कूप मह दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्शन पेख सुख पाया कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई।

0: भय दर्श पेखे, हस्त पुनीत ठहलावा, हृदय पुनीत हृदय हर बसयो, मस्त पुनीत संत तूरावा, मस्त पुनीत संत तूरावा, सर्व निदान नाम हर हर कै, जिस कर्म लिखिया तिन पावा, जन नानक कौ गुर पूरा भेट्यो, सुख सहजे अनद बिहावा, सारग महला पंजवा, त्यायो अंत बार नाम सखा, जह मात पिता सुत भाई ना पहुचै, तहा तहा तू रखा रहाओ, आंद कूप ग्रह मह तिन सिमर्यो, जिस मस्तक लेख लिखा, खुले बंधन मुकत खुले
1: खुले
0: खुले बंधन मुकत गुर कीनी, सब तू है तू ही दिखा, अमृत नाम पिया मन त्रिपतिया, आघाए रसन चखा, कहो नानक सुख सहज मैं पाया, गुर लाही सगल तिखा, सारग महला पंजवा, गुर मिल ऐसे प्रभु त्याया, भयो कृपाल दयाल दुख भंजन, लगै न ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिछुरै करी न बिसरै, साध संगे जत जाया, हौ बाल बाल बाल बाल चरण कमल कौ, बाल बाल गुर दरसाया।

0: हम आजोनी संभव सर्ब थान घट बीठा भयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा बाल बाल प्रभ चरणीठा संत संगत
1: सत संगत
0: सत संगत की रेण मुख लागी।

प्रिय गुर साथे नेमक बचन प्रभ हियरै बसयो सगल भूख मेरी लाथे रहाओ कृपा निदान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मोहे ते

अमृत नाम औखद मुख दीनो जाय पया गुर पैरै कवन उपमा कहो एक मुख कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के।

रसना जपते तू ही मात गर्भ तुम ही प्रत पालक वृत्त मंडल एक तुहि रहाओ तुम है पिता तुम ही फुन माता तुम है मीत हित प्राता।

दूर कर बपुरे संग गोपाल है जान रहाओ। मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो।

कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टान्यो कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टान्यो ज्योत प्रकाश पै

ठाकुर बिनते करन जन आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ कृपा निधान सुख के सागर जास सब मह जा को छायो संत संग।

चरण मन धारिया गुर की धूर करो नित मजन किल विख मैल उतारिया गुर पूरे की करो नित सेवा गुर अपना

निराव समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लै हो हर हृदय अराध हो छुटकै आवन जानी उद्यम सकत स्यानप तुमरी देह ता नाम बखानी सही भगत भगत से लागे।

0: सही जह ते उपजो तहि समानो साई बस्त अहि कहो नानक परम गुर खोयो ज्योति ज्योत समहि ज्योति ज्योत समहि
1: समहि ठीक है
0: ज्योति ज्योत समहि सारग महला पंचवा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले

ठाकुर सब थाई, निकट बसै सब नीरै रहाओ, बंदन तोर राम लिव लाई, संत संग बने आई, जन्म पदार्थ भयो पुनीता, इच्छा सगल पुजा।

एकत्र मिलहो संत साजन गुण गोबिंद नित गाहे रहाओ बिन हर भजन जेते काम करिय है तेते बिरथे जाहे पूरन परमानंद मन मीठो तेस बिन दूसर नाहे तेस बिन दूसर नाहे जाप तप संजम कर्म सुख साधन

कुशल पाछा खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरा गुण गोपाल हर राया बिसर न जाई निमख हृदय ते पूरा गुरु मिलाया। कर कृपा राखे दास अपने जी जंत बस जा कै एका लिव पूरन परमेश्वर भौ नहीं नानक ता कै। सारग महला पंजवा जा कै राम को बल होए सगल मनोरथ पूरन ताहू के दुख न व्यापै कोए रहाओ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उत्तम करो दर्शन पेखन कौ कर्म परापत होए गुर बरसादी दृष्ट निहारो।

0: नैन श्रवण शरीर सब कुटियो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनाथ रंजान उदर ले पोख है।
1: अनाथ रंजान,
0: अनाथ रंजान उदर
1: रंजान नहीं कहना, उल्ल रंजान,
0: अनाथ रंजान उदर ले पोख है।

साध संग गाव है गुण गोबिंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोच है बिरले लागे ध्यान जिस है कृपाल।

चार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना केहो कृपा निध गोबिंद पूर्ण जीव दान सब देहो सत सत हर सत सुआमी सत साध संगेहो सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेहो सारग महला पंजवा गोबिंद जियो तू मेरे प्राण आधार साजन मीत सहाय तुम ही तू मेरो परवार रहाओ कर मस्तक धार्यो मेरा मथ है साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सब फल पाए रसक राम नाम त्याए अब चल नीव तराई अब चल नीव तराई सतगुर कबहू

0: राव। मातर पितर त्याग कै मन संतन पाहे बेचायो, जात जन्म कुल खोइए हाओ गावो हर हरि। लोक कुटुंब ते टूटिए पर किरत किरत करी
1: प्रभ।
0: लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुर मोका उपदेसिया नानक सेव एक हरी, सारग महला पंजवा लाल लाल बोहन गोपाल तू। कीट हस्त पाखान जंत सर्व मै प्रतपाल तू। रहाओ नह दूर पूर हजूर संगे सुंदर अरसाल तू। नह बरन बरन नह कुल है कुल नानक प्रभ कृपाल तू। सारग महला पंजवा करत केल बिखै मेल चंदर सूर मोहे उपजदा बेकार दुंदर। नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेग पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे। रहाओ तीन भौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही। ओन मत अंध धंध रचत जैसे महासागर होहे। उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास। पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नावा। हर बिन तेरो को ना सहाई का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई। रहाओ धन धरनी तर संपत सगरी धन धरनी अर संपत सगरी धन धरनी अर संपत सगरी। जो मान्यो अपनाई तन छूटै काश संग न चालै कहा ताहे लपटाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन तासो रोचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या जो सुपना रह नाई। सारंग महला नावा कहा मन बिख्या सो लपटाही। या जग मैं को रह न पावै एक आव है एक जाही। रहाओ कां को तन तन संपत कां की कासो नेहो लगाही। जो दिसै सो सगल बिनासै जो बादर की शाही। ताज अभिमान सरन संतन गाह मुकत हो हे छिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही। सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवावै माया मद बिख्या रस रचियो। माया मद बिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवै। रहाओ एहो संसार सगल है सुपनो देख कहा लोभावै। जो उपजै सो सगल बिनासै रहन न को पावै। मिथ्या तन साचो कर मान्यो एह बिद आप बंधावै। जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावै।
1: सो जग मुक्ता
0: जन नानक सो जन मुक्ता
1: सो जग रंगदार। जन नानक सो जग मुक्ता राम भजन चित लावे। रंगदार पोथियां ते जन पाठ है पर इत्थे जग है। हां जी जग ठीक है
0: चलो। जन नानक सो जग मुक्ता जन नानक सो जग मुक्ता राम भजन चित लावै। सारंग महला नावा मन कर कबहु ना हर गुण गायो।
2: ये रंगदार पोथियां वाले नोट कर दियो जी विद्यार्थी सारे इस पासे 1231 नंबर अंग ते अंतली पंक्ति है जन नानक सो जग मुक्ता। जन पहला आ गया एक बारी फिर इथे सरूपा विच भी जागी है जज्जा ते गग्गा गलती नाल इथे जन किते लिखा गया होना। जन नानक सो जग मुक्ता राम भजन चित लावे इउं पाठ करना है। हाँ जी जागी
1: जग पाठ ठीक है।
0: सारंग महला नावा मन कर कबहू ना हर गुण गायो। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ ਰਹਾਓ
2: ਜਿਹੜੇ ਪਦਸ਼ੇਦ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਕਰ ਕੱਕਾ ਰਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਹਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਮਨ ਕਰ ਕੱਕਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਦਸ਼ੇਦ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਸ਼ੇਦ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੱਕਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਕਾਰੀ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
1: ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਭਾਇਓ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਓ ਨਹਿ ਕਾਨਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਝਿਓ ਨਹਿ ਸਮਝਾਇਓ ਕਹਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਔਗਣ

0: गए मोको कर संतन की तोरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तुद्या गै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा,

प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निद आवै ताए, सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। हे गरीब निवाज दातार पातशाह, आप जी ने अपार बख्शिश कीती दीवान दी संपूर्णता उपरंत आप जी ने पावन श्री मुख वाक बख्शिया है। आप जी दे सुंदर स्वरूप दी टहल सेवा होई, सोहिला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया, बाणी पढ़दिया सेवा करदिया आप जी दी हजूरी विच विचरदिया होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी मुआफी बख्शो, अगे तो समत बख्शो। इस वक्त आप जी दे चरणां विच सेवादार संगत हाजर है, आप जी अपने सुंदर आसना उपर विराजमान हो के आराम फरमाओ, सेवकां नूं खुशियां बख्शो। सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ स्यो प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावह मूख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक पवह ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहै करै विचार, करते कै करनै नाही सुमार, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, धवलै उपर किता भार, धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए। लेखा लिखिया केता होए केता तान, सवाले हो रूप केती दात, जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ माल भख खाहे, असंख निंदक सिर कर है भार। नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोह, असंख कह है सिर भार होए। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखान। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावै नाही कोथाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हथ पैर तन देह, पानी धोतै उत्तर सो खेह, मूत पलीते कपड़ होए, दे साबून लइयै ओह धोए।

पे ही खाहो। नानक हुक्मी आवह जाहो, तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनया मनया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माहो, कवन जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने रुत माहो, ना कोई जा करता सिर ठीक।

एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगह जोध अपार, केते आ गणत नहीं विचार। केते खाप तुटह वेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाहि खाहे, केते आ दुख भूख साध मार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाएक आखन पाए। ओह जाने जेतिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे। आखह से पे के ई के, जिसनो बख्से सिफत सालाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवह अमुल लै जाहे। अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबान। अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान। अमुल कर्म अमुल पुरमान, अमुलो अमुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लिव लाए, आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े करह वखियान, आख है ब्रह्म आख है इंद। आख है गोपीता गोविंद, आख है ईसर आख है सिद्ध। आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव। आख है सोर नर मुन जन सेव। केते आख है आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करेहे, ता आख ना सकह केई के। जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल वे गाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार। सो दार के हा सो घर के हा, जित बह सर्ब समाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे केते राग परि। स्यो कहियन केते गावन हारे, गावह तुहनो पौन पानी बै संतर। गावै राजा धर्म द्वारे, गावह चित गुप्त लिख जान है। लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईसर ब्रह्मा देवी। सोहन सदा सवारे, गावह इंद इदासन बैठे। देवते आदार नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर। गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी। गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़नर खीसर। जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन। सुरगा मछ पयाले, गावन रतन उपाय। तेरे अठ सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा। गावह खानी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा। गावह खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। से तुदनो गावह जो तुद भावन, रते तेरे भगतर साले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई है, पी होसी जाय ना जासी। रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती। कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर विखै कीता अपना, जेव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई, करसी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत, झोली ध्यान की करह बिभूत। खिंथा काल कुवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत। आदेश तिसै आदेश, आदि अनिल अनाद अनाहते। जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण। घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की। रिद्ध सिद्ध अव

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जेव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान, ओहो वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता एहो वेडान। आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार, कर कर विखै सिरजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बाव लख हो हे लख हो वह लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस, ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईया है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राजमाल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुते थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का इहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेस, केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेस, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद। केतिया सुरते सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ता किया गला कथिया ना जाहे, जे को कहै पिछै पछुताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर। तिन मह राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे। जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोह। करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार। कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड। जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतह जाप श्री मुख वाक पात साही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहि जाय।

है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अबरण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सर्व माने समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौने, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंतर जंतरं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं, तेरा जोर चाचरी छांद, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग पर्यात छंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृश्यं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे,
अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हून है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विसव रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग नारंग जाक है जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही वहु चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास

काल अनभूत अंग अभा अभंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाढ़ अन दंड बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर परती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद न सत्तराय न मित्राय न परमंग न पितराय न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्तराय न मित्राय परे है पवित्राय पृथिसाय अदिसाय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज दिसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभाहै के धर्मं तुजाहै के आ शोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्तरंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गौनाए के सर्वत्र पावनाए के सर्वत्र देसाए के सर्वत्र पेसाए के सर्वत्र राजाए के सर्वत्र साजाए के सर्वत्र दीनाए के सर्वत्र लीनाए के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसाय के सर्वत्र पेसाय के सर्वत्र कालाय के सर्वत्र पालाय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सोखाय के सर्वत्र पोखाय के सर्वत्र तराणै के सर्वत्र प्राणै के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भानै के सर्वत्र मानै के सर्वत्र इंद्रै के सर्वत्र चंद्रै के सर्वं कलिमै के परमं फहिमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुस्नुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदि अनूप हैं समस्त पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्ब भागे सो सर्वा अनुराग त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं कि नरकं परनास हैं पृथ्वील प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी शांद अपंग हैं अनांग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अपूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाद बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासुल फिकन हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं बिहेस्तुल निवास हैं के सर्बुल गवान हैं हमेशुल रवान हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुर्रत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो बेपूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मद पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद
खाल खंड ख्याल गुर बर अकाल, गुर बर अकाल घर घर प्रणाम, चित चरण नाम अनछिज गात, आजिज ना बात अन झंझ गात, अन रंज बात अन टुट भंडार, अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म, अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद, करुणालय है अर कालय है, खल खंडन है मह मंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ब उबारण है, त्रित के तरण है जग के करण है, मन मान्या है जग जान्या है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्व पास्या है सर्व नास्या है, करुणा कर है विश्वं पर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है खल खंडस है, पार ते पार है करुणा कर है, अजपा जाप है अथपा थाप है, अकृता कृत है अमृता मृत है, अमृता मृत है करुणा कृत है, अकृता कृत है धरणी तृत है, अमितेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है अमृता मृत है, अजबा कृत है अमृता मृत है, नर नायक है खल कायक है, विश्वंग पर है करुणालय है, नृप नायक है सर्व पायक है, भव भंजन है अर गंजन है, रिप तापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कार है हर्ता हर है, परमात्म है सर्व आत्म है, आत्म बस है जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र।

भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सोएक देवैया दानव देव फनेंदनी साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन
पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, सत्तर सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप, जौन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट इस नान गजादिक दान, अनेक स्वंबर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत, अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्री पत के प्रस हैं पग, ते नर फेर ना देह तरेंगे, कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहे ओ बक ध्यान लगायो, नात फिरियो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिखियान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहों सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पछाह को शेष निवायो, को बुतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो, को बुतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पात साही दसवी कब्यो बाच, बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की।

दय मोहे बचा बहो सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिखे सब करतारा मोर अच्छा निज कार दय करिया सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तारिया है चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुजू करियहो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सेवकियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट की जाना है जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेवना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रान काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला
कृपा दृष्ट तन जाहे निहारिहो ताके ताप तनक मह हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन

आवै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार चौपई को कहै चौपई। संबत सत्रह सहस पनिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं। आन्यो राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें, हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया। सहज सेती मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया। शब्द गावन आईया, शब्दोता गावहो हरि केरा। मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार, ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही। घर तेरा है, घर ता तेरा है, सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही, घर तेरा है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए, सुख मन आए वस्या। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो। जिस दिया एह वडियाईया, कह नानक सुनहो संत हो। शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे। कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते। काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया। तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी, देह निमानी लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही। कृपा कर बनवारिया, एस नाओ होर थाओ नाही। शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कह। आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे। ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जिन का मोह टुटा। तिन का शब्द सचै सवारिया, कह नानक एहो आनंद है। आनंद

मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपिहो जियाहो लाहा खटिहो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए हूरत किता जिचर हर रस पलै ना पाए हर रस पाए पलै पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कहै नानक होर अन रस सब विसरे।

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे।

मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साहांद साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा

सर्व सुख पावे मेरे मन जप मन सतनाम सदा सतनाम आलत पालत मुख उजल होई है।

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नु सुनना करना जियो। नेत्र बंद रखने कृपा करके किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जियो। जिन्हां गुरमुखां नू शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो। दो मिनट मगरों फिर आपां रसना नाल जपांगे जियो।

साहिब जी बलहारी गुरे आपण दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इते चानन होदया गुरबिन घोर अंधार गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझन आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सत विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु न देखियो नहु कियो ते अक्यथ संसार मह जिन गुरु न देखियो नहु कियो ते अक्यथ संसार मह ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब थे वड्डा सतगुर नानक

कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पात साह सिरसाहा दैसाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहू।

महाराज कृपा करते ने इस पावन सलोक के अंदर गुरु की महिमा गाई है। वैसे सतगुरु जी ने ना क्या गुरु दाता है और गुरु ठंड का सोमा है और गुरु ना तिना लोगों के चानण करन वाला है। गुरदाता गुर हेवै घर गुर दीपक ते हो लोए। गुरु को मिलता की है अमर पदार्थ। अमर पदार्थ होंगे जेड़ा कदे मरण वाला नहीं कदे मुक्कण वाला नहीं वह पदार्थ गुरु को ही मिलता है। पर जिदा मन मन जावे ना इस पदार्थ नू लैण लई तैयार हो जावे फिर सुख होए उन्हूं इस लोक विच भी सुख हुंदा जिहड़ा गुरु कोलो नाम पदार्थ लै लैंदा और परलोक विच भी उह सुख माणदे ने। इसलिए गुरु की महिमा इस सलोक विच गाई है और इत्थे इह 52 अखरी की अज समाप्ति भी होनी है। सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरु साहब बख्शिश करते ने गुरु ही माता है और गुरु ही साढ़े लिए पिता है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। जिस तरह माँ बच्चे नू दुध पिया के उन्हू पालदी है सतगुरु साहब कृपा करते ने ब्रह्म ज्ञान रूपी दुध पियाउंदे सिख नू। और पिता जिस तरह किन्ने किन्ने पदार्थ लियांदा है इकट्ठे करके बच्चे नू सुख देण दे लई गुरु साहब ने बड़ी कृपा की। पिता रूप हो करके बाणी एकत्र की है और एकत्र करके बाणी साढ़े उधार लई सानू बख्शिश की है। गुरदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरदेव स्वामी का अर्थ है मालक और गुरु ही साडा मालक है ते परमेश्वर रूप है गुरु। क्योंकि निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तारजन सगली मोही। गुर परमेश्वर एको जान। इसलिए गुरु मालक है ते संसार दा मालक तां जी परमेश्वर है। महाराज कहिंदे गुरु ही परमेश्वर रूप है। गुरदेव सखा अज्ञान भंजन। गुरु साहब जी साढ़े सखे हैं। सो सखा हुंदा है कि बड़ा सखा मित्र है मेरा। जिस तरह अर्जन दे लई कृष्ण सखा सी और सखे होण करके उन्होंने जेड़े वैरी सन उन्होंने अर्जन के नाश किए। इस तरह गुरु साहब साढ़े सखे मित्र हैं। अज्ञान भंजन अज्ञान रूपी जेड़ा वैरी है उन्हूं भंजन नाश करन वाले ने। गुरदेव बंदप सहोदरा। सतगुरु साहब जी साढ़े बंदप संबंधी हैं। सहोदरा हुंदे इक्को माँ दे पेट तो जाए हुए केतां जी मेरा सहोदरा है मेरा सखा मेरा अपना है। इउं ओ सखे संबंधी भरा दी तरह सतगुरु आप कृपा करन वाले हैं। गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै। सतगुरु जी दाते हैं हरी नाम का उपदेश सतगुरु आप ही कृपा करके देंदे ने। सारे पदार्थ गुरु की शरण में आके मिल जाते हैं क्योंकि गुरु दाता है। जिन्हें तुसी पखंडी देखोगे देहधारी ये तो बेचारे मंगते बने हुए ने आप पदार्थों तो थोड़े ने पर सतगुरु जी दाते हैं नाम दे दाते ने। सतगुरु हर नाम उपदेश है। एहो उपदेश गुरु साहब ने कृपा करके सानू दिता है। भाई मनुखा जन्म बड़ा कीमती है परमात्मा का नाम जप के नू सफला करना चाहिए और फिर आप ही कृपा करके झोली विच नाम का दान पाते हैं। इसलिए सतगुरु जी दाते ने। गुरदेव मंत निरोधरा। गुरु साहब जी का दिता हुआ मंत्र उपदेश यह सब तो उपर है। निरोधरा जिन्हों को कट ना सके जेदे उपर किसी का जोर चल ही ना सके। यह गुरु नानक साहब का मंत्र सब तो श्रोमणी है। भाई गुरदास जी ने पढ़िया ना तुसी वाहे गुरु गुर मंत्र है जप हो मैं खोई। यह सब तो वड्डा मंत्र गुरु नानक साहब ने कृपा करके कलयुग के अंदर सानू दिता है साढ़े उधार दे लई। कई कहिंदे ने जां जी कोई मंत्र मिल जावे जिस मंत्र का असी जाप करिए तो सानू सारे फल मिल जाण। एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कलयुग के उधार वास्ते गुरु नानक साहब जी ने सानू वाहिगुरु गुरमंत्र दिता है। फिर इस मंत्र के उपर किसी मंत्र का जोर चलता नहीं। जिहड़ा गुरमंत्र का अभ्यासी है ना उन्हूं तां चिंता करन दी लोड़ ही नहीं हुंदी। पर अभ्यास कीता होवे अमृत

तुम ही नानक दास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतक स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु

0: मैं ना ही प्रभु सब किश तेरा, एक गह निर्गुण ओ गह सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा। इतने हाजरीदार प्रवान हो या भुलां दी खिमा, सतगुर कृपा करन सभना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करों गुरसिखी जीवन दी दात, गुरु चरणा नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन। सो आओ अगला समा सिख पंथ की महान शख्सियत भाई साहब भाई हरमित्र सिंह जी, आप सब संगत गुरमत विचारों द्वारा निहाल करे, एकाग्रता बख्शिश करने, दासियों की फतेह प्रवान करने जी। बुलाओ फतेह आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी अनुशब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन, बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब वाले अंदर रागी जत्था संगत वालों भाई साहब जी के जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करते हैं बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी भाई साहब भाई हरमित्र सिंह जी मंजी साहब वाले कि वह आप जी गुरमत विचारा सरवण करवाउन जी। आप जी गुरमत विचारा सरवण करो जी, ते गुरु साहब जी दियां खुशियां प्राप्त करो जी। सात सिंह जी आप जी दे चरणां च बेनती है कि अमृत संचार जो कि 16 अगस्त दिन ऐतवार सवेरे 7 बजे होवेगा जी, जेडे प्राणियों ने अजी अमृत नहीं छकिया गुरु वाले नहीं बने उन्हां दे चरणां च बेनती है जी कि आप जी अमृत छक के गुरु वाले बन के गुरु साहब जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहीआं जी। ते जेडे प्राणी अमृत छकना चाहुंदे हन उन्हां नूं बेनती है जी कि आप जी अपने नाम लाइब्रेरी विच दर्ज करवा देने। आओ हुण सारे जाने गुरमत विचारां नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु साहिब जी पाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा, परवान गणी से एह आए, सफल तना के कामा। मेरे राम हर जन कै हौ बल जाई, ऐसा का कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। जन्म मरण दोहों मह नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। जन्म मरण दोहों मह नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिया गुरु कै

पर विरती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्महा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। हर पहलड़ी लाव पर विरती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्महा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाभ पहली,

हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द वजाए जन नानक दूजी लाव चलाई

निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना वडभागी पाया, हर कथिए अकथ कहानी, हिरदय हर हर हर धुन उपजे, हर जपिय मस्तक भाग जियो।

जहां जाइया तहां सुहले कर कृपा प्रभ मेले हर गुण गावो सदा सुपाए मन चिंदे सगले फल पावो

जीवन सफल बनाले गुर के सिखा बचन गुरु दे मन दे विच वसाले गुर के सिखा बचन गुरु दे मन दे विच वसाले उस दी बनू दल।

0: बगने दिली दरबार दे एह बगने दिली दरबार दे
1: कहना मन दे नहीं तापे आधार कहना मन दे नहीं तापे आधार
0: बाल बच्चा नहीं इना दा छड़।

स्वगुरु सासन जी एनिक सेवा प्रवान करना भुला चुका दी की मां आओ सत्कार्यो पैसा जी पासो अगला प्रमोशन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

हर त्या वह तुध जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी, जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी।

जी तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैं डासाई, जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करै तन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आ

प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिय, चन चन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बध कियो घाट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घाट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है।

असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही पुपा अंडज जे रज से तज कीनी उतपुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रचा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठ वत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट न है रच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट शाह छुए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा

ध्यान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो। विण तुद होर जे मंगना

एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों झटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद साहो जिस पास बैठे आ सोही है सबना दा वे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई मेरे जियड़े ता सर्व

हर जाके वस है काम ते नाम, सो ऐसा हर त्याइये मेरे जीअड़े, ता सर्ब सुख पाव है मेरे मनाम। जाप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी,